पहले सुचा पोए सुचे बैठा सुचे अगे रखियो उनको ना कुटो जा सुचा हो के जे गया लगा पन सलोक वक्ति जाए सुटिया किस ए

मन चिंतेड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, मन चिंतेड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, मन चिंतेड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, मन चिंतेड़ा।

अपनी खलकत दी इन्नी वड्याई नहीं की जिन्नी वड्याई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने की। मैं रान इथों तक कहता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। किसी ने नहीं किया मेरा रूप।

हे ईश्वर साडा सुभाई है भूल जान असी कल जुगी जीव जो होए साडा सुभा है कोई सानू अखां विच पाण लई सुरमे दी सिलाई दे देवे असी उसका तो धन्यवाद कर देंदे हां पर तू सानू सुंदर नेत्र बख्शे हन कंचन वर्गा शरीर बख्शिया है चंगा रहन बहन पहनन ते होर बेअंत कृपा तू कीतियां हन असी तेरा शुकराना नहीं करदे तेरा शुकराना भूल जांदे हां इसलिए ए हमरो सुआओ ए साडा सुभाई बन चुकया है जे एक जन्म दा होवे सुभा तां बदल लईए कईयां जन्मां तों इही सुभा तुरिया आ रहा है इसलिए तेरी रहमत ही सानू तार सकदी है तेरी बख्शिश ही सानू तार सकदी है ए ईश्वर अगे सारिया ने मिल के अरदास करनी है हमरो सुआओ हमरो सुआओ साडा की सुभा है आद अंत जो राखन हार ध्यान देना आद अंत जो राखन हार

भाई साहब भाई गुरदास जी जो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे वक्त होए गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जिथे साडे कलयुगी जीवां ते परपकार करके धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी रचना कीती उस दे लिखारी हन भाई साहब भाई गुरदास जी। एक बार आप जा रहे हन ते पिछे बड़िया संगतां जा रही हन साथ संगत बोलो तेरी वारी बड़िया संगतां मगर जा रही हन और किसे ने देखिया भाई ये किड्डी महान हस्ती होवेगी जिदे मगर ऐनी संगत जा रही है। आ कई बार चार बंदे मगर लग जान मनुख होर दा होरी हो जांदा ते चार बंदे मत्थे टेकन लग पैन तां अपने आप नूं रबी समझ बैठदा। पर भाई साहब भाई गुरदास जी किड्डी महान हस्ती सन और किड्डी निम्रता सी उन्हां विच उन्होंने एक नमूना दसिया निम्रता दा। बड़ी संगत मगर जा रही है भाई साहब जा रहे हन किसे ने देखिया भाई ये किड्डी महान हस्ती होवेगी जिदे मगर ऐनी संगत जा रही है ते पुछन लगा भाई ये कौन साहब हन ध्यान देना पुछया भाई इना दी तारीफ क्या है तां भाई साहब ने ए सुन लिया ते आप ही उरे आ गए कहन लगे भाई प्यारिया जे मेरे बारे कुछ पुछना ही तां संगतां नूं ना पुछ मैनूं पुछ आखिया जे मेरे बारे कुछ पुछना है तां इन्हां लोगां नूं ना पुछ क्योंकि इन्हां ने मैनूं बाहर मुखी वेख्या है ते मैं अपने अंदरले नूं भी जानदा हां जो कुछ मैं हां असी भी अपना परिचय कराउंदे हां कई वेला निम्रता दा शब्द भी कह रहे होइए ते पिछे वड्डा अहंकार लुकिया हुंदा कई वेला निम्रता दी गल करदियां भी अहंकार दी गल कर जांदे हां ते अपने लई चंगे तो चंगा शब्द वर्तन दा जतन करदे हां भाई साहब भाई गुरदास जी भी अपना परिचय करा रहे हां आख्या जे मेरे बारे पुछना है ता इना नू ना पुछ मैनू पुछ आख्या जी तुसी दस दियो ता भाई साहब कहदन हो अपराधी गुनाहगार हो बेमुख मंदा आख्या जे मेरे बारे पुछना ही ना इना ने मैनू बाहर मुखी वेख्या मैं अपने अंदरले नू भी जानदा हां आख्या जी तुसी दस दियो ता भाई साहब कहदन के हो अपराधी गुनाहगार हो बेमुख मंदा चोर यार जुआर हो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विशास काती अकिरत घन में कोई न रखंदा सिमर मुरीदा ताडिया सतगुर बख्शंदा कहंदे ने ए ईश्वर दा दरबारी ऐसा पतित नू पावन करन वाला दरबार है कि जिथे मेरे वर्गे अपराधी नू थां मिल गई सात संगत बोलो श्री भाई भाई साहब कहंदे हन मैं रोम रोम गुनाहगारा पर बाई औगण मेरे विच सब तो वड्डे हन जो इहदे विच भाई साहब ने दसे और मैं समझदा हां ए औगण ओही दस सकदा है जिसने इन्हां अवगुणा तो फते प्राप्त कीती होवे सात संगत बोलो श्री भाई ए ओही गल कह सकदा ना मैं गुनाहगार हां नहीं ते हर मनुख ने अपने गुनाह दी पोटली मगर बनी है ते लोकां दे गुनाह दी पोटली अगे बनी हुई है हमेशा दूसरे दे ही औगण वेखदा मनुख दी शुरू तो यही आदत ते अपने गुनाह दी पोटली उसने मगर बनी हुई है मगर ना ध्यान करेगा ते ना ही नजर आने हन सतगुर बोलो श्री वाहिगुरु पर हजूर बाणी विच कहंदे हन के जे औगण देखने हन तां अपने अंदर चाती पा ते जे गुण गाने हन तां किसे मनुख दे वी ना गा उस ईश्वर दे साईं दे अकाल पुरख दे गुण गा तेरा मनुष्या जन्म सफल हो जावेगा सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। आ जो तुसी श्रवण कर रहे हो ना दया के दयाल मोहे पतत उधारिए ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਲੈ

ने अस्सी फीसदी फरीद एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया तो बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। कई सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब पातशाह जी ने लिख दिता।

मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। रब दे प्यारियां दी निशानी है जे घर विच दुख आ गया ता परमेश्वर दी रजा समझ के पाना मिठा करके मनदे हन। जे परमेश्वर ने खुशियां भेज दित्तियां ता उना खुशियां विच अहंकार नहीं कर दे, ऐसा नहीं कर दे दात प्यारी विसरिया दा तारा नहीं। आख्या ए भी परमेश्वर की दात है ते केत्या दुख भूख सद मार ए वह दात तेरी दाता। सदा उसकी रजाए विच रह के अपना जीवन सफल कर दे हन जिवें कबीर जी कह

दर्शन दृष्ट ध्यान धर, दर्शन दृष्ट ध्यान धर गुर मूर्त होई, दर्शन दृष्ट ध्यान धर गुर मूर्त हो।

ज्ञान होया भगत सदना जीव के हुन मास विच ना छोड़ दिता एकाग्र चित होके प्रभु भक्ति विच लग गए ते मन विच इच्छा हुई के जगन्नाथपुरी जाके प्रभु दे दीदार करिए यात्रा करके आइए। आप तुर पे रस्ते विच रात पै गई मन विच सोचिया भई चलो कितों पुरुषार्थ करके प्रसाद छक लेंदे हां। जां शहर विच गए एक घर जाके बेनती कीती एथे एक मुटे

पानी पिता माता धर्त महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगिया बुरियाया वाचे धर्म अधूरे करमिया।

चले है पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना।

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये लफज लिखाए जेड़े के इतिहासक लफज हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं

दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त फजले कहंदे ने मेहर किरपा इना दोना लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहां जहाना वास्ते है गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा।

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार

अपने बच्चियां नू कुर्बान कर दिता, अपने प्यारे साथियां नू वारी वारी मौत दे मुंह च धकेल दिता, अपना धन दौलत संपत्ति सुख चैन जवानी सब कुछ इउं स्वाहा कर दिता जिवें कोई यज्ञ करन वाला किसे महान हवन कुंड विच आहुती ते आहुती देई जा रहा होवे। जिस दी महानता दा ए हाल सी कि ए सब कुछ कर दिया होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाय नहीं निकली, कदी अखां तों अथरू नहीं वगाए, कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे, निस्संदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरुखां विच ही हुंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत कीते होण, अते फिर जिहड़ा महापुरुष शिखर ते पहुंच जांदा है ओह ही भविख नूं देख सकदा है, जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकदे। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान दे विच जगह जगह हुंदे हुए नादेड़ गोदावरी नदी दे किनारे वाल जा पहुंचे। क्यों? गुरु साहब जी उस आदमी नू जेड़ा के वैराग दी नींद विच सुता पिया सी उसनु वैरागमय नींदर तू जगाउण आए, ओ आदमी जी दा नां सी माधोदास। इस तू पहला कदी उसका नाम नारायण गिरी भी सी, अते इस तू पहला उसके माता पिता उसनु लक्ष्मण देव कहंदे हुंदे सन। इस लक्ष्मण देव नारायण गिरी माधोदास बैरागी जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदा है, इस नूं वैरागमय नींदर तू जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी दे किनारे

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहने वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने। इस बारे थोड़ा जा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव दा जन्म जम्मू अते कश्मीर दी एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर दी एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव दा जन्म होया। इना दे पिता एक मामूली जहे जगीरदार सन और एक दिन शिकार खेड दिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया। पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदो हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी। उदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इना छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी। उदे मन ते अजेहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया। पहला सन्यासी बनिया उसका नाम नारायण गिरी पै गया। फिर बैरागी बनिया योग सिखिया ले फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया दखण

आश्रम बना के रहन लग पया। अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधोदास दे आश्रम पहुंचे ते माधोदास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधोदास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधोदास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इथे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे

जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नूं जाके कहण लगे, तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गए। लाओ लश्कर भी नाल है, ओदे चेहरे अगे किसे दियां अखां नहीं हुंदियां। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहण लगा, दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है, मैं उन्नू पलंग तो थले डेग दियांगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां। पलंग नू उल्टाण दी कोशिश कीती पर माधो दास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सकिया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जेड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

आत्मा जाग पई सी, उस दे अंदर पवित्रता सी, सफाई सी, उचता सी। इस जागृत आत्मा ने गुरु महाराज जी नु वेखदे सार ही पहचान लिया। उस महापुरुख बारे भी इस माधोदास बैरागी ने सुनिया। वो महापुरुष गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां ने तिलक अते जंजू दी रखिया ले दिल्ली चांदनी चौक विखे अपना सिर दिता।

वध। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने बड़े प्यार नाल माधो दास नूं देखिया,

एक होर हिरनी भी है जिसनू कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार दे। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि जिसनू जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ते पे ने जुल्म पै करते ने माधोदास बैरागी ने। ए सुनिया हो

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारियां नूं बुलाया है पर ना मैनू बुलाया ना तुहानू बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जाने की इजाजत दी। सती जिस वक्त अपने पिता दशरथ प्रजापति दे महलों में पहुंचे जी।

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उस वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरव वीरभद्र वगैरह पैदा हुए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी ता भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। ता उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ के यग दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसण लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलो आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी। शिवजी भगवान ने

अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं जालमा का नाश कर रहे हैं। उन अकलिया नूं ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हां विच जुलम हुंदे ने, वह शहर तबाह कर देंगा जिन्हां शहरां विच मजलूमां नूं जालम तंग करदे ने। यह कहिंदा होया बंदा सिंह।

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचे अपनी